जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर, कहां जाऊं

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ू। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज शुक्रवार का दिन है, 24 तारीख जुलाई का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। घड़ी की ओर देखा जाए 7:00 प्रोग्राम में 3 मिनट व्यतीत हो चुका है। 3 मिनट ओवर सुपर स्टूडियो तय हो चुका है। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656066। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का ऐप नंबर 0322266611। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए दुनिया की कोने कोने तक ये प्रोग्राम सुनाई देता है और हॉलैंड देश के बीच में नीदरलैंड और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में DAB प्लस रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन के आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

जिन पेश की गए हरिये हरन के आवास में सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिये हरन के आवास में ये सुंदर भजन हर सुबह आप सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। शुक्रवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। ये प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। इसी डार की नंबर पर आप स्टूडियो की ओर डार कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं आज की सुबह की प्रोग्राम में।

प्रोग्राम में, भजन यात्रा प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए रेडियो SBS की जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए आपकी बार ये सुंदर भजन की ओर। ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं अनुराधा पोर्टवाल जी की आवाज में, आप जरूर सुनते ही रहना।

सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। 4 मिनट बाकी है प्रोग्राम में सुबह 7:30 बजे में, और प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार एक श्री कृष्ण भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, और आप सुनेंगे जगदीत सिंह की आवाज में सुंदर सा श्री कृष्ण भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

रेडियो SBS की जरिए ये सुंदर और सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई सोनू निगम की आवाज में। चले अब की बार ये सुंदर भजन की ओर। रेडियो SBS की जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है।

अच्छा माता जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों चले यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। श्री महालक्ष्मी जी की आरती आप तक पेश होगा महेंद्र कपूर और रोहन कपूर जी की आवाज में। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, और सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई कविता कृष्णमूर्ति एंड अभिजीत की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। सुनने वालों, शुक्रवार का दिन है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर

रेडियो वेस्ट भी इसकी सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रोमांटिक मैशअप आज शुक्रवार की सुबह की प्रोग्राम में पेश हुआ है। सुन वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। आज शुक्रवार का दिन 24 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

Ruka jak Nikaury, Udit Narayanki, Avans Megi, Jana Bostrogambi, Piski Geja, Sabhi, Aure, Sabhi, Sidivaluki, Sevambi. चलिए आपकी बार सोनू निगम और सपना मुखर्जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है

इसके जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। लाइव के जरिए ये प्रोग्राम सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का। कुमार सानू एंड अलका

थे कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे अब की बार हम किसी से कम नहीं फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है, अनुराधा पोटवाल और सोनू निगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज शुक्रवार का दिन 24 तारीख जुलाई का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस

पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो हम आपको ले चलते हैं पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर। हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले एक गाना शारदा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, फिल्म सूरज, उसी फिल्म का गीत प्रोग्राम में आप सुनेंगे शारदा की आवाज में।

सूरज फिल्म का गीत पेश की गई शारदा की आवाज में। ये गाना अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे अब की बार पद्मश्री मोहम्मद रफी। पद्मश्री मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक गाना जो पेश किया जा रहा है 1973 का फिल्म, फिल्म का नाम सूरज और चंदा, मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर।

0: खूबसूरत गाना आई द फिल्म फिल्म सूरज और चंदा, उसी फिल्म का गाना बस पेश की गई मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। ये गाना भी आपने सुना जो आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। किशोर कुमार एन आशा भोसले प्रोग्राम में, फिल्म स्वर्ग नरक।
1: नहीं नहीं
2: क्या?
1: अरे नहीं नहीं,
2: अरे बाबा

नरक फिल्म का गीत पेश की गई आशा भोसले और खासतौर पर किशोर कुमार की आवाज में। शुक्रवार है 24 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इंडिया भारत देश से नोएडा से अनुरेश हमें खबर किया है। और क्या खबर किया है कि आज जबकि 24 तारीख जुलाई है 1937 में 1937 में मशहूर एक्टर जो काफी नाम कमाया फिल्मी दुनिया में, जैसे कि फिल्म शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, फिल्म शोर, अब ऐसे बहुत से फिल्म में काम किया और 2015 में पद्मश्री अवार्ड्स उनको मिला। हम बातें कर रहे हैं मनोज कुमार, मनोज कुमार के बारे में जिनका पैदाइश 24 तारीख जुलाई 1937 में पाकिस्तान में हुआ। काफी फिल्मी में बस काम किया, 55 फिल्म्स में काम किया, 55 फिल्म्स में अपना एक्टिंग किया। और आपको खबर किया जा रहा है बीते हुए साल में उनकी वफात हो गई और वो भी 4 तारीख अप्रैल 2025 में उनकी वफात हो गई। मनोज कुमार जिनका काफी हिट फिल्म्स होते हैं, जिस तरह से मैंने आपको खबर किया, फिल्म उपकार, पूरा पश्चिम, शोर, शहीद और एक फिल्म जो काफी लोग ने देखा, पसंद भी किया, हेमा मालिनी के साथ फिल्म में काम किया मनोज कुमार, और वो है फिल्म क्रांति, जिसमें वही हिट गाना जिंदगी की ना टूटे लड़ी। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। अरुणेश शुक्रिया, धन्यवाद की आप ये इंफॉर्मेशन के लिए। और शुभ दिन पेश किया जा रहा है, रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना, इंडिया भारत देश नोएडा में। मुकेश की आवाज में गाना गर्दिश में होता रे।

उपकार का गीत पेश किए गए महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में। एक गाना जो अभी तक काफी पॉपुलर है, काफी हिट है, और इसी तरह से गुलशन बाउरा का लिखा हुआ गाना बस पेश की गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत पर। एक फिल्म जिसमें मनोज कुमार और आशा पारेख ने काम किया है, फिल्म उपकार का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। 10 मिनट व्यतीत हो चुका है सुबह साढ़े 9 बजकर रेडियो SBS की सरिये पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। फिल्म काला पत्थर, उसी फिल्म का गाना अब की बार मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में, द बिग बी अमिताभ बच्चन

रेडियो SBS के जरिए मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। आप सभी सुन वालों की सेवा में ऐड फिल्म काम चोर उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी टारगी नंबर पर आप रेडियो SBS का ऐप पर भी ऐप कर सकते हैं। कभी कभी फिल्म का नाम किशोर कुमार एंड लता।

रेडियो SBS के जरिए लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश की गई, कभी अजनबी थे उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। स्पाइक ने इस शहर से तार अंदर आया है हेंद्रिक बसंत और सीता बसंत, जो हमारा प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं। स्पाइक ने इस शहर के अंदर में शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर, किशोर एनाशिया।

रेडियो एस बी एस की सर ये मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्म खानदान उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो एस बी एस का प्रोग्राम को सुनते हैं, बहुत सी सुनने वालों स्टूडियो की ओर भी तार कर रहे हैं। सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया। सभी जो ऐप किया है रेडियो एस बी एस का ऐप पर, सभी को भी शुक्रिया धन्यवाद कहा जा रहा है। चले प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। अब की बार ये गाना आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो एस बी एस की सरिया।

0: रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।

रेडियो SBS की जरिए खासतौर पर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाना बस पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर, फिल्म का नाम फर्श,

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए एक और गाना मरहूम मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में बस पेश किया जा रहा है, जरूर सुनते ही रहना।

गाना आप सभी ने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के आवाज में सुनकर और काफी पसंद किया है। काफी खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे लता जी की ओर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611 और रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। लता के बाद महेंद्र कपूर की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है बाहरे फिर भी आएंगे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आज के प्रोग्राम में एक गाना पेश होगा मुकेश किशोर कुमार एन महमूद के आवाज में। चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं और फिल्म का नाम है हम जोली।
1: हरिओम हरिओम हरिओम।
0: द माइटी मुकेश, द मैन विद एफ ग्रीन वॉइस किशोर कुमार और महमूद के आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।
1: बेटी ये भारत है,
0: फिल्म का नाम हम जोली।
1: मंगल बुध जुमेरा जुम्मा शनि चंद्र

0: अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे, चांद पे दुनिया पहुंची है, तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। माफ करो, इंसाफ करो, मुश्किल बड़ी आ पड़ी, अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू
1: आई डोंट नो,
0: यू मैं क्या बोलूं जी, यू टेल मी,
1: आई डोंट नो,
0: यू टेल मी मैं क्या बोलूं जी। ओ बाप,
1: भांडों की तरह नाच कर और गवैयों की तरह गा कर ये फैसला नहीं हो सकता, ये फैसला कल अदालत में होगा।
2: The Heart of the Millions, the Mighty Mukesh, किशोर कुमार और महमूद की आवाज में फिल्म हम जोली का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। मोहम्मद रफी

रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई खास तौर पर पद्मश्री मोहम्मद रफी मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में खास गाना भी आपने सुना। चले लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

गाना जो पेश की गई लता मंगेशकर की आवाज में मेरे दिल में हल्की सी, अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था परसमनी, उसी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए अब की बार हेमंत कुमार।

0: पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी गाना पेश की गई किशोर कुमार की आवाज में। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो है कल शनिवार सुबह 9 बजे से फिर जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। यहां से हम आपको ले चलेंगे खबरें की ओर और खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

एक खूबसूरत लोक मैशअप बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है रेडियो वेस्ट में. इसके जरिए अभी आपने सुना सवा ग्यारह का वक्त का तो फिर एल्फ स्टूडियो टाइट हो चुका है और रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं. चलिए अब की बाहर ये गाना की ओर छूकर मेरे मन को

कर रहे मेरे मन को। सुटवालू रेडियो SBS का प्रोग्राम डे अबे प्लस द्वारा सुनाई देता है हॉलैंड देश के बीच में नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में डे अबे प्लस रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम को आप सुन सकते।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में 12 मिनट ओवर हाफ 12 स्टूडियो टाइम

मिलते हैं जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। सुनने वालों एक गाना और होगा, उसके बाद प्रोग्राम में खबरें पेश होगा। आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि आज शाम में छह बजे मृत्यु समाचार, दुख की खबर पेश किया जाएगी। आज शाम में छह बजे प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर पेश होगा।

रहे हैं हल्का जी की आवाज में। ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो वेस्ट में, इसके जरिए अभी आपने सुना। सुन वालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। आपकी तमाम फरमाइशें, तमाम खबरें जो है सस्ती दामों में रेडियो SBS के जरिए बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। अनुराधा पोटवाल एन कुमार

सानो जेके आवाज में सुनवालो रेडियो SBS का वेबसाइट radioSBS.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए उसी सुनवालो बस हमेशा और रोजाना रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में ये प्रोग्राम जो आप सभी के लिए हमेशा पेश किया जा रहा है हमारा फुल डिजिटल स्टूडियो से

रेडियो SBS के जरिए जावेद अली की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपके बार जो पेश किया जा रहा है

खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना। बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं, तो चले प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है अलका एंड उदित नारायण की आवाज में।

0: काबुल सुब्रियो की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में।

आज के प्रोग्राम में पेश की गई पत्थर की सनम फिल्म का नाम, मनोज कुमार का खास एक्टिंग किया हुआ गाना। इस प्रोग्राम में पेश की गई द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में अभी आपने सुना। पुरानी नगमे आज के ये प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में मुकेश जी की आवाज में ये गाना।

दमाइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश के बाद किशोर कुमार प्रोग्राम में।

से बॉम्बे। चलिए प्रोग्राम में अभी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की इस प्रोग्राम में एक काफी पुरानी

रेडियो SBS के जरिए ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना शहरी उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

कुमार किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले प्रोग्राम में

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई। 100 बरस की जिंदगी से गाना कबूल और इसी तरह से मोहम्मद रफी और आशा की आवाज में गाना पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-6560। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार हम आपको ले चलते हैं किशोर कुमार की ओर। किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम सच्चा।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था सच्चा झूठा। किशोर कुमार की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई। एक गाना महेंद्र कपूर की आवाज में पेश किया जा रहा है आज के इस प्रोग्राम में। जब भी ये पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, तो हम आपको ले चलते हैं महेंद्र कपूर की ओर।

कपूर, महेंद्र कपूर की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में मुकेश की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम संगम। फिल्म का गीत आप प्रोग्राम में सुनते ही रहना।

सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए है। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352 65 65 60। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशुलि करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशुलि करमलाल, दी फहारते वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएक्शन कैन नॉट ऑल टाइम सर्फ माना द वेबसाइट www.radiosbs.nl।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

ये नयन दरे दरे आपने सुना हेमंत दा की आवाज में फिल्म कोहरा से। और अब आप सुनिए प्रोग्राम गीतों के लहर में अगला गाना फिल्म खामोशी से। वो शाम कुछ अजीब थी।

आपने सुना फिल्म पागलपंती से, और अब आप सुनिए अलका याचनिक और उदित नारायण की आवाज में फिल्म तेरे नाम से। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आंखें हैरान सी रह जाती हैं।

सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। अलका याचने की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, अली असमत की आवाज में फिल्म जिस्म 2 से, मौला मौला।

तुम मगर सामने आप ही जाया करो, लाजमी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। इस खुशों और अलका याचने के अभिजीत एक वामा आयो द फिल्म राज। तुम मगर सामने आप ही जाया करो, लाजमी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। इस खुशों और अलका याचने के अभिजीत एक वामा आयो द फिल्म राज। एंड दा कम दिस प्रख्त लीजिए।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मेरे हाथ में तेरा हाथ है इस uit de film फना एंड uit de film रूही आफ्ता इस het volgende liedje via Radio SBS किस्तों।

एली रे एली, क्या है ये पहेली? ऐसा वैसा कुछ तो हुआ है सहेली, ये शायद फिल्म यादें. En het volgende liedje in het programma Gito en Kelleher via Radio SBS is de titelsong van de film Janam Samchakuru, gezongen door Anu Malik en Hema Sardesai.

कुमार दो फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के ये समाये नजारे खो गए हैं, हम कसम से तुम्हारे हो गए हैं। En uit de film Jurwa 2 komt gezongen door Anu Malik en Neha Kakkar. Uchiha Building 2.0.

न सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, न सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, वॉस आउट द फिल्म बदलापुर एंड इसके सॉन्ग दौर आतिफ असलम। ए या आज देसी लीचिस होट वॉट गोन ऑफ न्यू फ्लिफ्ट। तू थोड़ी देर और ठहर जाए इस फोन टीचर, इन इट प्रोग्राम गीतों के लयर गसोंग दौर श्रेया घोषाल एंड फरहान सईद, आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड फन श्रद्धा कपूर एंड अर्जुन कपूर।

दुपट्टा मेरा वस द फिल्म मुझे कुछ कहना है इसका सॉन्ग अनुराधा श्रीराम द फिल्म अजनबी कौम कसम से तेरी आंखें अय्यारे अय्या।

आप सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। देनहाग शहर से समस्त दुखित परिवार सतीश और हरप्रीत राम प्रसाद और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। वुंसदाग 22 जुली बुधवार 22 तारीख जुलाई सुबह 4 के वक्त 79 साल नेखनन 57 साल की आयु में सतीश राम प्रसाद के फुआ, हरप्रीत राम प्रसाद के फुआ सास, दो लड़कन सोहम और स्वर के आजी देनहाग खैस्त्रन वेख के रहने वाली एर्ना सुशीलावती राम प्रसाद की मृत्यु हो गई है, जिन्हें लोग एर्ना के नाम से पहचानते थे और स्वर्गीय सुखराम जयराम जीबोत ब्लाका किशोर के पत्नी थे। अर्थी के आखिरी दर्शन करने के लिए आप हर एक को मौका दिया जा रहा है। त्रिपस्त्रा द्री होंदत नेख देनहाग शहर में फंदाग फ्राइडाग 24 जुली साफंस फान tot 8. Arti somwaar 27 tarik juli, maandag 27 juli, smiddags om 2:45, crematorium Ipenhof, Hoflaan nummer 18, Delft, Scherbe, daar kriya ki jayegi. Arnhem, Scher se samas dukit palivar Ram Prasad aur badhai aur samas larkan, bahut dukh ke saath ye sarvajanik sochana de rahe hai. Woensdag 22 juli, woensdag 22 tarik juli, subha 4 ki waqt 79 79 साल की आयु में सुदेश बधाई के फुआ सास, मीला राम प्रसाद के फुआ, अंजलिना बधाई की आजी, अशीन भान सिंह के अजिया सास, देनहाग खैस्त्रन वेख के रहने वाली एर्ना सुशीलावती राम प्रसाद की मृत्यु हो गई है, जिन्हें लोग एर्ना के नाम से पहचानते थे और स्वर्गीय सुखराम जयराम जीबोत ब्लाका किशोर की पत्नी थी। अर्थी के आखिरी दर्शन करने के लिए आप हर एक को मौका दिया जा रहा है। त्रिपस्त्रात 309 देनहाग शहर में फ्राइडाग 24 जुली साफंस फान 7-8। अर्थी मांडाग 27 जुली सोमवार 27 तारीख जुलाई स्मिडाग्स ओम 2:45 क्रेमेटोरियम इपनहोफ होफलान नंबर 18 देनहाग शहर में दाह क्रिया की जाएगी। जिन लोग इस मृत्यु समाचार के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे या समस्त दुखित परिवार को आप शोक सहानुभूति पेश करना चाहेंगे तो तार की नंबर आपको दिया जा रहा है 9-6-49-86-44-44 और दूसरा तार की नंबर है 9-6-85-28-30-01। Er is geen bijtak aan huis, niwaasthaan per bijtak nahi hai. Sun walo se niveden aur guzaris kiya ja raha hai, khabar ko aur jaan pehchan walo tak pahuncha dene ke liye. Radio SBS in tamam dukhit palivaron ko is dukh ki dino mein shok sahanubhuti pesh kar rahe hai aur upar wala se yahi prarthna kiya ja raha hai in tamam dukhit palivaron ko is dukh ki dino mein pura pura shakti dene ke liye. Radio SBS aap logon ke dukh mein pura aur पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है।

बिंदिया चमकी चूरी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे। इस गजोंग दूर सोनू निगम एनल के याचने कैं कौम तो द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। Uit de film Bajrangi Bhaijaan is het volgend liedje via Radio SBS. In het programma Gitong Kileher hoort u dan Elele, elele, elele, elele, elele, tel beta selfie lele re.